0: BFVS गोरखा रेडियो
1: ए लाहोरे दाई
2: के हो कांची
1: लाहोरे को फैशन कसुरे
2: आ तस्ता जावा
1: बाबे कस्तो गम क्यों को हो
2: लो भनु त
1: लो
2: लो मादले दाई गम काउनु होस्ता

छी है कस्तो रहे छ भेना के न हो गम के को केस्तो सुंदा फुरंग भई लाहुरे हर ढल के को लेकिन साले क्या है बंदे चुरुट हिरसल के को केना भूलचस लाहुरे दाई लूट

0: TFBS गोरखा रेडियो हो।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागी।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।